अवस्था में लिखा असहाय नागरिक या कर्मीरा अनाथ बाल बालिका अपांग ज्येष्ठ नागरिक होकर सेवा में 10% छूट के व्यवस्था करके कौशल अस्पताल प्राली बांसगरी शाखा 5 बांसगरी बर्दिया प्रांत पेट्रोल पंप दक्षिण पांचर संपर्क फोन नंबर 084400192 और 084400200

साथी को जवाब में होइन आफ्नो सपना को पक्ष में निर्णय करूं तनाव भए खुला कुरा गरौं समाधान लागू पदार्थ होइन लागू पदार्थ बाट टाढा बसौं स्वस्थ र उज्यालो भविष्य बजाऊ।

संसार निकलना बड़ा मजा रहा तो कहते हैं ना जब मैं वन संसार निकलना तैयार करूं।

0: था। वो मुझे परम आग्रह रहा, आगे आगे हुई चन्या क्रियाकलाप नहीं करी। वो अपराध में शरीक होकर सदाए भागीदार नहीं बनी।
1: डिवीजन बल कार्यालय पर दिया। फोन नंबर 0 84

नागरिक एक पर महिला अनाथ बाल बालिका अपंग ज्येष्ठ नागरिक मुखन पूर्ण सेवा।

सम्पर्क फोन नम्बर 084400192 हो 084400210 राष्ट्रिय पर किया संसदीय पोर्ट 11 पेपर 14 रुपये।

0: तारीख
1: हो। एक व्यापार व्यवहारिक वित्तीय संस्था लिमिटेड रेडियो द्वारा एफएम का सहकार्य जनहित जारी संदेश
2: सामुदायिक पुस्तक

0: ने था सा अभाव ने महिला संसाधनों ने पालन करने का इस कृषि में पहले घर में रहता था दूध उत्पादन में कमी आने उच्च जोखिम की श्रेणी और साफ द्वारा सात रस्ते उच्च तापमान को कारण दूध उत्पादन घटे आमदानी और सबसे
1: किसी दिन अजू को यही जोखिम में संबोधन करते प्लांट चेक को सबक खाने पर सभी को इंश्योरेंस में आधुनिक पद्धति में आधारित भई बिना कुछ झंझट बीमा करना और बिना कुछ कागज दाई जाति प्रकार

0: जय सुप्रभा रेडियो कोरोना का मौसम रेडियो में स्वागत बिंदु चौधरी जनसभा मौसम विज्ञान विभाग ऐन तीन दिन समय बर्दिया बांटी लगाये लिंगू प्रदेश का तराई विभाग में टाटी हावसरिया तथा टाकुआ बहना संभावना नजरी रहा अत्यधिक गर्मी का कारण जनजीवन प्रसंग खेतीपाती में भी असर पड़ सकने हमले को आवश्यक सतर्कता अपनाये चुके संग मनसून संग हरेक बरस बिहार उद्वारले जनधन क्षति पूरीना करता पहले को अपक मौसम हवा पानी बिहार दुकान के बारे में बढ़े थे वर्षी नगर पालिका छठ अध्याय को सैनी थालो
1: I'm going to take them back to shop on the other side of the area.

0: अनि उपर जुन जग्गा परिचालन बाटका ऋण लिएर सम्बन्ध किस्ता तिर्न कतिर छ बैङ्क लघु वित्त संस्थाहरू पनि त मञ्जी क्षेत्रबाट तर के के ऋण पाले छ
1: स्वार्थ बमोजिम कर्जा भुक्तानी गर्न ऋणी कानुनी ओ नैतिक दायित्व हो
2: नागरिक वित्तीय संस्था लिमिटेड हो रेडियोको नवरात्रिमा जनहित जारी सन्देश
3: सोच्नु पर्छ जो कोही यहाँ आइसक्दा

0: खत्म होता है ना मरे जाएगी। लेकिन मैंने जिनकी बजाय खाली मदद का था भगवान मानव सही जानकारी का वो लगभग उठा जितना काम का पैसा पता बनाएगा आधिकारिक
1: संख्या

0: खाता में कितना आयरन कैल्शियम आयरन सुधारे स्वस्थ आयु सुरक्षित परिवार
1: को सहकारी में स्वास्थ्य कार्यालय भारतीय से जनहित में तैयार संदेश

0: जल विद्युत प्रयोग गर्दै खेतीबारीमा सिँचाइ प्रक्रियाबाट
1: वर्गीय क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षका 2082/83 वैशाख 21 गतेसम्म पासपोर्ट बनाए ऐन 6,476 जनाहरू पासी सुरक्षितमा सुरक्षित आफ्नो पासन सम्बन्धी सूचना लिएर आज सुरक्षित आफ्नो पासन शामी कार्यक्रम अन्तर्गत चौथा चरण कार्यान्वयनमा मोराबिलिटी सम्बन्धी अस्मृतिकरण कार्यक्रममा सेक्रेटरी प्रदेश व्यवस्थापक नगरपालिकामा 1,013 987 बरियार पालिकाका 950 पार्वती नगरपालिका 944 तथा गरिया नगरपालिकाको 921 सुरक्षित आफ्नो भाषण सम्बन्धी जानकारी दिनुभएको कार्यक्रमको क्रममा वैदेशिक रोजगारी मसे सम्बन्धित ठगी तथा विभिन्न समस्याका 48 उजुरी प्राप्त पूरक जानकारी देखिन उमध्ये झाँचस्वी समस्या समाधान देखेर जनाइएका प्राप्त उजुरी मध्ये नेपालमा होइन ठगीको 3 घटनाहरूमा ग्रस्ते गन्तव्य मुलुकमा होइन ठगीका 3 घटना दर्ता हुँदा सार्वजनिक कार्यक्रममा सेक आयोजनक उद्धार गरिकन तथा पेट भुकन 22,43,000 रुपियाँ क्षतिपूर्ति प्रक्रिया जानकारी फेक कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारी र कार्यमा सामाजिक समस्या प्रकारले 81 जना परामर्श सेवा मेरोबाट ख्याल चिन्ता डिप्रेसन आत्महत्या जोखिम तथा स्वास्थ्य समस्या मसे प्रभावित व्यक्ति र मनोसामाजिक सहयोग प्रदान गरिकन सामिक कार्यक्रम प्रक्रियाका जिल्ला अधिकृत फाइदराम चौधरी जानकारी दिनुभएको उहाँका अनुसार परामर्श सेवा लिन मध्ये 33 जनामा ख्याल चिन्ताको लक्षण 26 जनामा डिप्रेसन तथा 10 जनामा आत्महत्याको प्रयास वा जोखिम देखा आजकल दिन प्रतिदिन अत्यधिक कर्मी भर्ती गर्दा असीम कर्मीको समयमा हाम्रो स्वास्थ्यमा असीम असर पर्छ। यहाँ विषयमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागका वरिष्ठ मौसम विन कुमार परियाल कुराई सुने।
2: नमस्कार, म मिन कुमार परियाल वरिष्ठ मौसमविद जल तथा मौसम विज्ञान विभाग। गर्मी यहाँमा सर्दो घाम लागेपछि तापक्रम बढेर धेरै गर्मी भएको अवस्थालाई हामी तातो देख्दछौँ। तराईका जिल्लाहरूमा यदि लगातार 2 दिनभन्दा बढीसँगै 40 डिग्री वा त्योभन्दा बढी तापक्रम भयो भने तातो दिन भएको वा तातो हावाको दौर चलेको घोषणा गरिन्छ। अहिले गर्मीको समय छ, पानी परिहाल्यो भने तापक्रम केही घट्न सक्छ, तर पानी परेन भने तापक्रम बढ्दै नै जान्छ। सर्दो घाम लाग्ने र तापक्रम बढेर 40 डिग्री पुगेपछि हावा पनि तातो नै चल्न थाल्छ। यसले गर्दा गर्मी धेरै नै हुने गर्छ। तातो हावा प्रभावले मान्छेको स्वास्थ्यमा निकै असर गर्दछ। यसले टाउको दुख्ने, मुटुको गति तीव्र हुने, श्वास प्रश्वास र रक्तचाप कम हुने, शरीरको तापक्रम बढ्ने, साला सुख र रातो हुने, हृदय लाग्ने र अचेत हुने जस्ता अवसर देखिन सक्छ। यसमा तपाईँले काहीँ ज्यानै पनि लाग्न सक्छ। त्यसैले चर्को हावाको दौरबाट जोगिन सावधानी अपनाउनु होला। यसको लागि दिउँसो चर्को घाम लागेको बेला घरबाट बाहिर प्रवेश गर्नुहोस्, निक्लिनु पनि साथ ओर्नुहोस् वा अन्तको कपडाले घरमा चोप्नुहोस्। खेतबारीमा सम्पर्क बिहान र बेलुकी मात्रै काम गर्नुहोस्। प्रशस्त पानी र कर्फ्यूको रस खानुहोस्। धेरै पसिना आएमा जिम्मेवार पनि तिर्नुहोस्। चिसो पानीले बोलाउनुहोस्। चिनीको मात्रा धेरै भएको दुर पदार्थ कोल्ड ड्रिङ्क्स, चिया, कफी, सोडा जस्ता चिज खानुहोस्। गर्मीले छपडी भएर निधार, कम्बल, घाँटी र हातगोडामा पानीपट्टि लगाउनुहोस्। स्वास्थ्य समस्या आएमा नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जानुहोस्।
1: नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपालगंज वितरण केन्द्र विद्युत आपूर्ति सुधार गर 5 ठुलो फिडर थप गर्दा 16 ठुलो फिडर मसिन आपूर्ति वृद्धिक नेपालगंजमा बिना कर्मीहरूमा मध्यनजर गर्दै 5 ठुलो फिडर थप गरिरहेको विद्युत आपूर्ति सुधार हुन निरन्तर कार्यरत नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपालगंज वितरण केन्द्रको प्रमुख संजय कुमार विश्वनाथ जानकारी दिलवाच पहला सूरत फीडर मसे गांव शहर में विद्युत आपूर्ति हुई के इलाक में अब पांच नंबर फीडर थपाई का गांव शहर का फीडर छुट्टिया इलाक में सरयाबाट छुट्टा छुट्टा फीडर तलकोसे गांव शहर दोनों ठाव में विद्युत वितरण और वोल्टेज में सुधार आएगा वितरण लाइन का मशीन तार होना व्यवस्थापन करके फीडर थप कर अब बाकी जिला में वोल्टेज कम नाशो आई छा फीडर संग आवश्यक ठाव में लोअर ट्रांसफॉर्मर समेत थप वैकलक विसर्जन विद्युत का बहुत माग होना व्यवस्थापन कर लगभग करोड़ लाख के पूर्वाधार विकास में प्राथमिकता देखी अलग वहां जानकारी दिलवाट बाकी जिला में विद्युत सेवा सुधार हो चुहावट नियंत्रण कला नेपाल में वितरण केन्द्र में मीटर अनुगमन बुकिंग करना व मीटर में गड़बड़ी करना ग्राहक पर सार्वजनिक विवाद का निर्माण समेत स्थल निरीक्षण करके सिंचाई खरीद तथा अन्य ग्राहक सेवा अवस्था बारे अनुगमन करके सेवा सुधार चुहावट नियंत्रण अभियान ले पार्षद महीना में बाटे में विद्युत आपूर्ति में सुधार मिलता लगभग फीडर थपल पास उधर रोड का समस्या खतरा कारण कर्मी मसे समेत आपूर्ति अवरूद्ध बनी हुई है केन्द्र का प्रमुख मिशन कार्यक्रमवाट नेपाल गैस वितरण केन्द्र नलाइट शाखा मार्फत महत्वपूर्ण स्थान में गंगा डाक केबुल काम रचना गिरता मरम्मत शाखा मसे नियमित अनुगमन मार्फत आपूर्ति अवरूद्ध हुईर आवश्यक सतर्कता अपना कारण विद्युत में चोरी नियंत्रण दुरूपयोग न्यूनीकरण तथा सेवा प्रभाव में थप सुधार राष्ट्रीय समाचार
0: प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस आदिवासी जनजाति मोर्चा नेतृत्व प्रतिनिधित्व तथा अधिकार का समर्थन उचित तरीके संबोधन कर आवश्यक पहल करने प्रतिबद्धता जनाने पार्टी मुख्यालय खानीपा में नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ डिफिल का पदाधिकारी बुझेल प्रदान पत्र बुझी नेपाली कांग्रेस का उप सभापति पुष्पा भुजाल संविधान से सुनिश्चित करने का आदिवासी जनजाति मोर्चा अधिकार कार्यान्वयन कराने का पार्टी संसद बाहर प्रभाव करने भूमिका निर्वाह करने बताने वहां नेपाल का संविधान आदिवासी जनजाति वर्ग प्रतिनिधित्व का समाधान स्पष्ट रूप में सुनिश्चित करना पार्टी भेटा तथा सरकार मध्य उचित नेतृत्व सहभागिता का कांग्रेस निरंतर पहल करना उल्लेख करते जब कांग्रेस संविधान संशोधन बारे स्पष्ट दृष्टिकोण बनाती रोक जाने की संशोधन प्रक्रिया में आदिवासी जनजाति मुगल का अधिकार और प्रतिनिधित्व का विषय में गंभीरता पूर्वक आगे बढ़े का आश्वासन समय दिलवाती वहां पूर्व अवसर में प्रदान पत्र बारे ध्यान न धरती निपुण का अध्यक्ष निमा लामा एवं विगत से जो समावेशी सिद्धांत होना आत्मसात करते लोग नेपाल कांग्रेस आदिवासी जनजाति मोर्चा का अधिकार सुनिश्चित कर महत्वपूर्ण भूमिका खेलना विश्वास व्यक्त करते वहां नेपाल का संविधान 2072 में आदिवासी जनजाति मोर्चा का ध्यान अधिकार लिपिबद्ध हो सकने उल्लेख करते आफ्नो अधिकार कार्यान्वयन करना समय लोग बटोले अध्यक्ष लामा वर्तमान विशेष परिस्थिति में नेपाली कांग्रेस पार्टी और संसदीय दल आदिवासी जनजाति मोर्चा का हक अधिकार कार्यान्वयन करा नैतिक भूमिका निर्वाह कर जोड़ दिलवाटे महाप्रधान

0: अधिकार सुनिश्चित कर प्रभावकारी भूमिका निर्वाह कर अर्जी करने उसे करने सिंह महासचिव विमला थारू मगर अनाम पत्र प्रस्तुत करते आदिवासी जनता के पक्ष मुद्दा गंभीरता पूर्वक संबोधन कर राज्य विद्यालय सरकार समक्ष अपन मां को आनंद को धन्यवाद जानकारी दिलवाते पाठक समय सरकार से जारी कर अध्यादेश आदिवासी जनता के उत्थान प्रतिष्ठान विद्यालय संचाल का परिषद विघटन बिना उल्लेख करते अग्र संस्था जस्त प्रतिष्ठान राजनीतिक दल प्रतिनिधि निपथेर पत्र नलगे महासचिव सर मगर के अनुसार उनठी ठो आदिवासी जनजाति संस्था आप प्रतिनिधि पठेना व्यवस्था लसिफे हाल का निर्माण संस्था से संबंध विच्छेद करना अवस्था सृजना होना कटि ने फिनी विषय में गंभीर ध्यान आकर्षण कर जनता
1: राष्ट्रीय समाचार संग्रह हमारे संदेश का समय उड़ाई लगे हमारे संदेश उड़ेगा से पहला मुख्य मुख्य संदेश भी फैला बांसुरी नगर पालिका कृषि उत्पादन में अधिक पड़ना कमी तथा खेतियों के जमीन में पर्वक समस्या समाधान कर सक्रिय बनेगा वो प्रमुख प्रतिपक्षी दल ने पालिका में आदिवासी जनजाति प्रतिनिधित्व तथा अधिकार का समर्थन उचित तौर से संबोधन कर आवश्यक फल करना प्रतिबद्धता जनाए सात बजे नेपाली भाषा हमार संदेश लेखी तब समाग समाचार कक्ष का सबको सहरिया कार्तिक सुनरिया गौरी चंद्र संग्र सुनरिया बिंदु उमय कुमार प्रविधा हेतु रेडियो बाबा एफएम सेन्टी जय गुरुबा
2: आफ्नै भाषा आफ्नै आवाज समावेशी रेडियो पुस्ता छ आवाज यो रेडियो पुस्ता रामनगर

केन्द्रमा भाषाका राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल डब्ल्यूडब्ल्यूएफ नेपालका साथै वित्तीय कल्याण स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्वदलीय अनुसन्धान केन्द्र संगठन सहकारीमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ विक्टमका साथ साथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

प्रसाद संसद प्रतिनिधि सभा में प्रधानमंत्री संग प्रश्न उत्तर कार्यक्रम राख सभामुख को ध्यान आकर्षण कराया। आज प्रतिनिधि सभा बैठक में बोलते नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी सांसद गोलावती शर्मा ने प्रतिनिधि सभा नियमावली को नियम 56 अनुसार प्रत्येक महीना को पहले साता प्रधानमंत्री संग प्रश्न उत्तर कार्यक्रम राख्परे व्यवस्था स्मरण कराने भाई।

0: लग रहा हूँ अभी तक किस तरह की उसे तस्करा पड़ना हो 3 लाख ऋण लेना हूँ 3 लाख से फिर ट्यूशन हूँ अब मैं तीर पड़ना परिवार का था
1: अपना 3 लाख रूपया ऋण लगा 3 लाख रूपया पिता के से लगाती अपना 3 लाख रूपया

है। व्यायाम शब्द करें धूम्रपान मंडी बाबा से दूर रही चलाफन नियंत्रण करी आज निर्णय कार्य जीवन रचना मुसलमान रोग से बाजी स्वस्थ जीवन अपनाई पोलियो गुरुबाबा सहकारी स्वास्थ्य कार्य प्रत्याशी जनहित्व जारी संदेश।